है वैसा ही खर्चा भी है, क्योंकि हम इंडिया में आके तो टमाटर ले जा सकते नहीं है, स्पेशली न्यूजीलैंड और इंडिया का अगर फासला देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा है। तो यही असली संघर्ष है, यही हमारी असली कहानी है, क्योंकि ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। वैसे ट्राई मी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दोस्तों? दो चीज़ें हैं। ट्राई मी में सबसे पहले जो आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं, आपकी चुनौतियाँ होती हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं, उनको आप निमंत्रण देते हैं, उसको आप कहते हैं कि आजा, कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे सामने हूँ, चल देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। तो आप अपनी सभी चुनौतियों में अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको आप एक कंपटीशन की तरह देखने लगेंगे, और जब हम लोग कंपटीशन की तरह किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। जब उसे पूरा जोर लगाते हैं तो डिफरेंट मेथड जो हैं हम उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट मेथड ही जो है हमें इस कॉम्पिटिशन में जिता सकती है, और उससे ही आपका एक ऐसा क्लियर मेथड आपके हाथों में आता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चुनौतियों को जो है निमंत्रण देना शुरू कीजिए। चाहे न्यूजीलैंड में आपको कुछ भी करना पड़े, आप जीत सकते हैं, उसको पॉजिटिवली लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर अगर हो तो वो कुछ भी पा सकता है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, उस चुनौतियों का सामना करते हैं, तो पता है आपको एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या मिलती है? आपकी ताकत। मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी आप किसी से बात करो और कहो कि आप में क्या ऐसा खास है या आप अपने बारे में डिफाइन करो, तो इंसान वो चीज़ें बोलता है जो ज़मीनी तौर से आप उससे कनेक्ट हुए ही नहीं होते हो। जैसे अभी किसी से मेरी बात चल रही थी और मैंने उन्हें बोला कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, तो वो उसको परेशान होकर बोलने लगा कि अरे क्या ही है, मेरे में कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। नहीं, आप सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिस हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल है, बस आपको ज़रूरत है उस स्किल को जानने की। तो जब आप चुनौतियों में होते हो तो आप उस कंपटीशन को जीतने के लिए जब आप काम करते हो तब आप अपनी ताकत को पहचानते हो। हम वे लोग हैं जो अपना देश, अपनी भाषा और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ आए हैं। अगर हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं ना, तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलें हमारा क्या ही बिगाड़ेंगी। हम अपनी रूट्स अपने देश से ख़त्म कर कर आए हैं। हम अपनी रूट्स के साथ साथ हमारे अपने, जिनके साथ हमने अपना बचपन जिया, अपने अपनी जवानी जी, उन सबको छोड़ कर आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या ही अलग कर देगी। और यही अगर हम अपने आप से रोज़ सुबह उठ कर बोलें तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आएगा। दूसरी चीज़ क्या है? जब आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे यार, जीवन में बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किल है। नहीं, वो मुश्किल नहीं है। अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कीजिए, अपने दृष्टिकोण को चेंज करना शुरू कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी की मुसीबत नहीं आती, ज़िंदगी में कभी भी किसी की मुश्किलें नहीं आती, उसे अनुभव कहना शुरू कीजिए, क्योंकि वो अनुभव जो आपको जीवन में मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। आपके पास एक नया हुनर ही देकर जाएगा, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, या फिर किसी और की संस्कृति में खुद को ढालने की बात हो। आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी डेवलप हो जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी मत बोलिए कि आप मुसीबत में हो, क्योंकि आप ये समझें कि जो यूनिवर्स है उसमें आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुसीबत में हैं, और वो आपकी छोटी सी मुसीबत, छोटी सी मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए उस मुसीबत को

उस मुश्किलों को अनुभव कहना शुरू कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपने अगर अपनी जिंदगी में काउंट कर ली तो आपको खुद समझ आएगा कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। और अल्लाह के बंदे, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा जीने की कोशिश तो कर।

अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होगा वो फिर आएगा। चलिए अब इसी के साथ अंकिता की जादुई टिप, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमें पसंद है प्रो। हम कोई भी मोबाइल भी लेते हैं तो भी हम सैमसंग प्रो, या अगर उसके साथ प्रो लगा हो, हालांकि वो अपग्रेड हो ना हो डैट डजेंट मैटर, बट स्टिल हमें लगता है कि प्रो है तो कुछ बढ़िया है। तो अब एक ऐसी जादुई टिप जिससे आप अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं और बन सकते हैं प्रो, वो क्या है दोस्तों? दोस्तों, आप अपनी जीवन में हमेशा सपने देखते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब मुश्किलों का आप सामना करने के लिए सक्षम होते हैं।

तो जब भी कोई भी मुश्किलें आए और जब भी आप कोई सपना देखें तो उसके प्रोज और कॉन्स पहले ही देख लीजिए और उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों के लिए क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि वो मुश्किलें मैं हटा सकूँ अपने जीवन से उस सपने को पाने के लिए। तो उस सपने को पूरा करने का अपने स्वयं अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। और याद रखिए, जब भी कुछ करने का सोच रहे हैं, मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किल से डरना शुरू मत कीजिए। मुश्किल को इस तरीके से समझिए कि उसमें कुछ मजेदार ऐसा छुपा हुआ है जिससे मेरी जीवन बदलने वाली है, जिससे गर्व से मैं लोगों से कह सकता हूं कि सुनो, मेरे पास ये स्किल भी है। तो मुश्किलों से डरना मत शुरू कीजिए, बल्कि मुश्किलों को डराना शुरू कीजिए। मुश्किल को कहिए कि देखिए, हम यही हैं, देखते हैं क्या होता है, आप जीतते हैं या हम। जीवन में बहुत खटास आती है ना, तो जब भी जीवन में उस मुश्किलों की वजह से खटास आए तो मेरी बात मानिए, अंकिता की जादुई टिप को हमेशा याद रखिएगा कि उस खटास को एक गिलास पानी में डालें और उसके बाद चीनी डालकर उसे शिकंजी की तरह पी जाए। जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन उससे आप भी बन जाएंगे प्रो। और आपको पता है ना, जो नॉर्मल सैमसंग फोन होता है और नॉर्मल और आपका प्रो फोन होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और उसी की वजह से उसकी कीमत बढ़ती है और वही कीमत आपकी भी बढ़ेगी, आपका भी स्किल बढ़ेगा। तो याद रखें, ट्राई मी जो है एक ऐसा टूल है जिससे आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। अरे सिंपल सी बात सोचिए, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के खून में ही होता है ट्राई मी। सोचो, आपको बहुत भूख लग रही हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा हो और आप परेशान हो, तो आपने वो समय भी जो है देखा है कि कुछ भी कैसा तैसा कुछ भी बनाकर आपने खा लिया, क्योंकि उस वक्त भूख थी। भूख में इंसान कुछ भी करता है, तो वो भी तो चुनौती थी जो आपने पार कर ली। घर में सोचो कड़ी बनती है ना, घर में कड़ी बनी और आपने दही डाली, दही आपको जल्दी पता चली कि दही तो खट्टी ही नहीं है, क्या करोगे, आप उसमें अमचूर डाल दोगे या आप उसमें नींबू डाल दोगे जिससे वो खट्टी हो जाए। मतलब कि प्रॉब्लम आई कि सब कुछ डाला आपने और फिर भी दही खट्टी नहीं बनी। आपने उस चुनौती को जो है सॉल्यूशन में बदला, उसमें नींबू डाल दिया और अमचूर डाल दिया। तो क्या किया आपने, आपके सामने जब प्रॉब्लम आई तो आपने वाई मी नहीं किया, आपने ट्राई मी किया। ट्राई मी तभी हुआ जब आपको भूख लगी थी, जब चाहा थी कि आज तो घर में कड़ी बननी ही है और चाहे जैसे भी बने मैं टेस्टी कड़ी जरूर बना के रहूंगा। तो यही जीवन के साथ है। जीवन में फिर आप क्यों वाई मी करते हो, कम से कम एक बार ट्राई मी मेरे हिसाब से करके तो देखो और तब आपको पता चलेगा कि आपने जो जीवन में पाया वो और कोई नहीं पा सकेगा। लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, बस थोड़ा सा तो आगे बढ़। वाई मी को ट्राई मी कर कर तो देख, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह उठे और अपने जो बेड से आप उठते हैं उसके सामने आप एक पेपर लगा दें जिसमें एक जगह लिखा हो वाइट पेपर पर वाई मी और उसे काट कर आप लिखे ट्राई मी और हमेशा उसे चैंट करते रहें, हमेशा बोलते रहें कि ट्राई मी ट्राई मी। आप देखेंगे ये जो चुनौतियां हैं ना, ये जो मुसीबतें हैं ना, वो दुम दबा के भाग जाएंगी। और जब चुनौतियां दुम दबा के भाग जाती हैं तो आपकी जीवन तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही हुआ। दोस्तों, ये हमारे सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही और एक्सपीरियंसेस अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आए, आप उसके बारे में सॉल्यूशन ले सके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल वेल रोमिंग से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ मेरे से बातें कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में उसको बिल्कुल सॉर्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब आगे हम अगला गाना सुने, उससे पहले आप हर ट्यूसडे

शाम 6 बजे सुनना ना भूलिए द इंडियन शो, एक ऐसा शो जो आपका अपना शो है, एक ऐसा शो जो आपको सॉल्यूशन भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है, आपको आपकी बातें वो बताता है जो वाकई में आप बहुत सालों से अपने अंदर दफना कर बैठे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता शर्मा और आप सुन रहे हैं MPR पर आपका ज़बरदस्त शो जो आपको वाकई में बहुत प्यारा है। अगले गाने के साथ हम इस वाई मी और ट्राई मी के सफ़र के का निष्कर्ष करेंगे, उसका कॉन्क्लूजन निकालेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।

देर लगी लेकिन जीना सीख लिया, और यही जिंदगी की मेन घड़ी है। जिंदगी जो है ना आपको बहुत चीजें सिखाती है। तो चलिए समअप करते हैं अपनी बातों को, और विराम देने से पहले एक छोटी सी हिदायत। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चले चाहे आगे बढ़े या पीछे मुड़े। जिंदगी दोस्तों वाकई में आसान नहीं होती, चाहे आप दिल्ली में हो या पामेस्टर नॉर्थ में हो। फर्क बस इतना पड़ता है कि आप अपनी उस परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। क्या आप उसमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा लगाते हैं या फिर नकारात्मक? तो अगली बार जब न्यूजीलैंड की हवा आपके छाते को उल्टा दे तो परेशान मत होइएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा और कह दीजिएगा, हे हवा, ट्राई मी। क्योंकि आप एक एनआरआई नहीं, बल्कि आपका एक नाम है, पता है क्या? नेवर रेस्टिंग इंडिविजुअल है, जो हर मुश्किल को पार करना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसी ही और मजेदार बातें और चिट चैट करने के लिए हर ट्यूसडे, हर मंगलवार आप मिल सकते हैं 6 बजे मुझसे, और हम करेंगे कुछ ऐसी बातें जो चटपटी होंगी और मजेदार होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सुनते रहिए एमपीआर, मानवतु पीपल्स रेडियो।